वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, और खुदा मोमिनों पर मेहरबान है।

0: खुदा को तकलीफ दो और ना ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो, बेशक ये खुदा के नजदीक बड़ा गुनाह का काम है।
1: इन तुबदु शैअन औ तुखफूहु फइन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा।
0: अगर तुम किसी चीज को जाहिर करो या उसको मख्फी रखो तो याद रखो कि खुदा हर चीज से बाखबर है।

0: ना।
1: और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो उन्होंने न किया हो ईजा दें, तो उन्होंने बहुतान और सरीह गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा।

0: उसमें अबदुल आबाद रहेंगे, न किसी को दोस्त पाएंगे और न मददगार।
1: यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन नार यकूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला।
0: जिस दिन उनके मुंह आग में उलटाए जाएं, कहेंगे ऐ काश हम खुदा की फरमाबरदारी करते और रसूल खुदा का हुक्म मानते।

वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे।

0: शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरवों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोज़ख वालों में हों।
1: الذين كفروا لهم

0: और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाए तो कोई उसमें से कुछ न उठाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और नमाज बिल इल्तिजाम पढ़ते हैं, और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है, और सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है।
1: वमा यस्तवी अलअमा वलबसीर,
0: और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं।
1: वलज़ुलुमातु वलन्नूर,
0: और ना अंधेरा और रोशनी।
1: वलज़िल्लु वलहरूर,
0: और ना साया और धूप।
1: वमा

0: क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से मेवे बरसाया तो हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंगों के कतआत हैं और बाज़ काले स्याह हैं।
1: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ

फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगुजीदा किया, तो कुछ तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं और कुछ मियाना रो हैं और कुछ खुदा के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं, यही बड़ा फजल है।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
3: In Sadaye Lahore, in Sadaye UCPS, Lotfan Gush Bedahid, FM 92.6, Jahane UCP.
4: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीबी की दुनिया।
5: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अब्बा, मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: द आवाज दे द लाहौर, द आवाज दे द यूसीपी नु आवरे FM 92.6 UCP की दुनिया।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magic 2.6.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन आर में हम बात कर रहे थे फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन के हवाले से और इसी पे बात कर रहे थे हमारे साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट डॉक्टर सलीम अख्तर मगराना, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें डिटेल जो है बताई कि फैकल्टी और इंडस्ट्री का कनेक्शन कितना ज़रूरी है और किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर अपने तलबा तलबात को जो है वो सिलेक्ट करवा के उनके टैलेंट की बेस पे उनको मीडिया में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और इसी पे मज़ीद आगे सवाल करते हैं सर से, पूछते हैं कि सर रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है उसका क्या किरदार है और वो कितनी ज़रूरी है। सर
2: देखें, फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन प्रोग्राम का तो बड़ा मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम से इंडस्ट्री में लेके जाना है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो हैं वो इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज के लिए सबसे अहम जुज समझी जाती हैं, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो हायरिंग्स करते हैं, स्टूडेंट्स के ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज होते हैं, उनका टैलेंट जो है वो असेस किया जाता है और उसकी बेस पे फिर उनको इंटर्नशिप्स ऑफर की जाती हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनीज के तौर पे सिलेक्ट हो जाते हैं। इन रिक्रूटमेंट ड्राइव से ना सिर्फ तुलबा का जो है वो एतमाद बढ़ता है बल्कि वो हकीकी माहौल के अंदर इंटरव्यू का सामना करते हैं कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, जिससे उनकी ग्रूमिंग होती है, उनको प्रोफेशनली जो है वो किसी भी जगह पर जब इंटरव्यू के लिए उन्होंने खुद को प्रेजेंट करना है तो उसके हवाले से उनका एक्सपोजर भी हो चुका होता है और इसी वजह से जो है जहां पर उनकी डेफिशिएंसीज रह जाती हैं कल को जब वो इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए बैठते हैं जाते हैं तो उनको पता होता है कि ये जो है ये चीज़ जो हम पहले मिस कर गए थे अब इसको हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है। तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि लेटर ऑन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं अपनी हायरिंग्स के लिए अप्लाई करते हैं जब, तो उस वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं।
1: बहुत खूब सर, और अगला सवाल जो है वो मेरी पसंद का है कि और मैंने बड़ा इन्जॉय किया जब हमने इंडस्ट्रियल विज़िट किया एक चैनल का और उस वक्त मैंने तो उससे बहुत इन्जॉय किया, तो इंडस्ट्रियल विज़िट जो है स्टूडेंट्स के लिए और वो कहाँ किस हद तक जो है स्टूडेंट्स के लिए कारामद साबित होता है, फ़ायदेमंद होता है।
2: इंडस्ट्रियल विज़िट देखें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों का इंडस्ट्री का दौरा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और जिस अमल में कल को उन्होंने शरीक होना है, जिस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई करना है, जिस पोजीशन पे कल को उन्होंने बैठना है, वो उसका बराए रास्त जो है वो वहाँ पे मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। जैसे टीवी में कोई हम इंडस्ट्रियल विजिट लेके जाते हैं, हमने दुनिया न्यूज़ में सिटी न्यूज़ नेटवर्क में इंडस्ट्रियल विजिट्स लेके जाते हैं तो वहाँ पर उनको स्टूडेंट्स को न्यूज़ रूम का दौरा करवाया जाता है, वहाँ पर उनको प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बताया जाता है, उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं, उनको सारे उस माहौल का पता चलता है कि एक इंडस्ट्री के को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहाँ बैठना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना है उनका, और ये तमाम चीज़ें जो है वो उनको इंडस्ट्रियल विजिट के बाद जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आती हैं। इसके साथ साथ जब क्लास में हम पढ़ा रहे होते हैं तो बेसिकली थ्योरीज पढ़ा रहे होते हैं और साथ में हम उनको प्रैक्टिस के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें इस तरह से इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिस करनी है। तो इंडस्ट्रियल विजिट जब स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो जो थ्योरी हम पढ़ा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं वो उसका बेसिकली जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि इंडस्ट्री में हो रही है वो उस वक्त उसको बराह रास्त जाके उसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि जी ये चीज़ हमें इस तरह से बताई गई थी और जब कल को हमने इसको एग्जीक्यूट करना है तो वो इस शेप में या इस फॉर्म में जो है वो हमारे सामने मौजूद होगी, तो हमने खुद को उसके लिहाज से प्रिपेयर करना है।
1: बहुत खूब सर, क्योंकि मैंने इसको बड़ा मज़ेदार तरीके से इंजॉय किया और मैं तो वेट कर रहा होता हूँ कि यूनिवर्सिटी से कोई एक आधा इंडस्ट्रियल विजिट जो है वो हमें मिले और हम जो जाके, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। मैं जब खुद भी गया फर्स्ट टाइम विजिट पे तो मुझे बड़ा मज़ा आया। हमने देखा मास्टर कंट्रोल रूम है, उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल रूम है, काम किस तरह करते हैं, और फिर हमें साथ में गाइड किया हमारे टीचर्स ने कि ये आपको हमने वहाँ पर बताया था, ये इतनी ज़्यादा जो स्क्रीन्स होती हैं ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह काम करती हैं, क्यों काम करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत कारामद साबित हुआ, और स्टूडेंट्स ज़ाहरी बात है उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद जो होते हैं। और सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलमेनाई मीटिंग्स और लेक्चर्स, और वो हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के पेजेस पे भी देखते रहते हैं कि मीटिंग्स वगैरह की रील्स अपलोड होती हैं और मीटिंग्स हो रही, तो उसका मकसद क्या होता है और वो कितने अहम होते हैं एक डिपार्टमेंट के लिए?
2: एलमेनाई जो होते हैं उनको तालीमी इदारों में एक बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है, ठीक है, और दुनिया के तमाम बड़े जो तालीमी इदारे हैं वो अपने एलमनाई को हमेशा अपनी एकेडमिक जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ एंगेज रखते हैं। तो उसी मॉडल के तहत यहाँ पर यूसीपी के अंदर भी हमारा एक बहुत बड़ा एलमनाई नेटवर्क जो है वो मौजूद है, डिफरेंट फैकल्टीज़ के लेवल पर मौजूद है, और फैकल्टीज़ जो हैं पहले अपने अपने तौर पर अपने एलमनाई को जो है वो एंगेज रखते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जाते हैं। इसका जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से ग्रेजुएट होके जा चुके हैं और इस वक्त कहीं पर भी इंडस्ट्री में किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं या एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने की और उसके बाद वो खुद किसी इंडस्ट्री के मालिक बन के बैठे हैं, सीईओज बन के बैठे हैं, ठीक है, तो वो एक तो उनके लेक्चर्स हम यहाँ पे करवाते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं या अपने प्रोफेशन के अंदर, और वो बताते हैं कि वो एज अ स्टूडेंट उन्होंने यहाँ पे लाइफ कैसे गुजारी और यहाँ की लर्निंग की बेस पे इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी ये पोजीशन कैसे सिक्योर की, ठीक है। उसके साथ साथ डेफिनेटली जब वो अच्छी पोजीशंस के ऊपर बैठे होते हैं तो जो इस वक्त हमारे ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं हम उनका कनेक्शन करवाते हैं उनके साथ, ताकि इन फ्यूचर जब यहाँ से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे तो वो उनका एक आपस में लाइजोन बन जाए, वो हेल्पफुल हों उनके लिए, बेनिफिशियल हों उनके लिए इंडस्ट्री के अंदर, और कोई भी जहां पर भी उनको ज़रूरत पेश आए, कोई मुश्किल पेश आए तो वो उनके साथ डिस्कस भी कर सकें, अपने कोई भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई सलूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकें। और डेफिनेटली वो सीनियर्स भी होते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जब हम उनको यहां पे बुलाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपने, तो जो एलुमनाई हैं हमारे बेसिकली वो हमारे ऑनगोइंग स्टूडेंट्स के साथ अपनी कामयाबी की कहानियां शेयर कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में उनको बता रहे होते हैं और उनकी रहनुमाई कर रहे होते हैं डिफरेंट लेक्चर्स के दौरान, डिफरेंट मीटिंग्स के दौरान, डिफरेंट सेशंस के दौरान, कि वो अपनी कैरियर प्लानिंग कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि कल को इंडस्ट्री में वो भी कामयाबी का सफ़र तय कर सकें।
1: बहुत खूब सर, और करियर प्लानिंग की आपने बात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे हम थेरी पढ़ते हैं, जहाँ पे सब कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक गोल का सेट होना और फिर वो एक स्टोरी के साथ सेट हो जाना वो बहुत मायने खेज होता है, वो बहुत मायने मुताबिक रखता है आपकी कामयाबी के साथ। तो यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और मैं हूं हमजा अहमद रज़ा। आज के इस प्रोग्राम में फैकल्टी मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसमें फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन प्रोग्राम बेसिकली है क्या, किस तरह काम करता है और कितना अहमियत का हामिल होता है। इसी पे बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर सलीम अख्तर मगराना, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन ऑफिसर भी हैं फैकल्टी और मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में। और ये सर ने हमें बहुत चीज़ें बताई, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई कि मीडिया के अंदर इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन किसी डिपार्टमेंट का, किसी यूनिवर्सिटी का कितना ज़रूरी होता है और किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जो तलबा तलबात हैं वो अपने आप को मनवा रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर, मुख्तलिफ बड़े इदारों के अंदर। तो सर के पास बहुत चीज़ें जो थी हमने सर से सीखी। और सर ये भी बता दीजिएगा कि क्लासेस में इंडस्ट्री बेस्ड वर्कशॉप्स जो होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक कारामद और मुफीद साबित होती हैं?
2: देखिए हमजा, जो इंडस्ट्री बेस्ड वर्कशॉप्स होती हैं वो स्किल बेस्ड लर्निंग का बहुत ही अहम हिस्सा होती हैं। और यहाँ यूसीपी में हमारे पास कैरियर सर्विस ऑफिस जो है वो यहाँ पे हर वक्त जो इन वर्कशॉप्स जो हैं वो उसकी अरेंजमेंट में लगा होता है। और इन वर्कशॉप्स के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाती है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किन चीज़ों के ऊपर करवाई जाती है? जो मार्केट की डिमांड है, जैसे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो उनको एडिटिंग के हवाले से, उनको प्रोडक्शन के हवाले से, उनको राइटिंग के हवाले से, उनको स्क्रिप्ट्स के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाती है। न्यू टेक्नोलॉजी, एआई का यूज़ कैसे करना है, एडवर्टाइजिंग के अंदर चाहे आपने वीडियोस बनानी है या आपने फोटोग्राफी करनी है तो उसके अंदर एआई का यूज़ कैसे करना है, तो ये तमाम ट्रेंड्स हैं जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं और उनके हवाले से स्टूडेंट्स को हम अपडेट करते रहते हैं। और अपडेट करने के लिए फिर उनकी इंडस्ट्री बेस्ड वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनली ज़्यादा स्ट्रांग हो के फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
1: बहुत खूब और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और सामईन कराम, आज के इस प्रोग्राम से उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बतौर होस्ट जो है मैंने भी इस प्रोग्राम से आज बहुत चीज़ें सीखी और कुछ मेरे दिल की बातें थी जो सर ने भी की कि फैकल्टी जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो डिपार्टमेंट में किस तरह बच्चे जो हैं उनके टैलेंट की बेस पर भी सेलेक्ट होते हैं और उनकी कारकर्दगी के बेस पर भी पाकिस्तान के बड़े इदारों में जो है वो काम कर रहे होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ सीखा जिसमें प्रोग्राम फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन प्रोग्राम के बारे में सीखा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री के बारे में सर ने हमें बहुत चीज़ें बताई और फिर वर्कशॉप जो होती हैं इंडस्ट्री बेस्ड वर्कशॉप हैं वो किसी क्लासरूम के अंदर होना और फिर तलबा तलबात का प्रैक्टिकली उसको देखना और सीखना ये बहुत कारामद होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का।
2: थैंक यू हमजा, आज आपने इतने अहम मौजू के ऊपर अपना प्रोग्राम जो है वो रखा था और मुझे उम्मीद है कि फैकल्टी और इंडस्ट्री के दरमियान जो कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप क्यों जरूरी हैं और कितनी जरूरी हैं और तुलबा के लिए ये कैसे जो है वो बेनिफिशियल हो सकती हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का ये फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन प्रोग्राम बेसिकली एकेडेमिया और इंडस्ट्री को लिंक करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।

सर, और उम्मीद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम से हमारे सामईन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, किसी डिपार्टमेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह उसकी कनेक्शन जो है किसी इंडस्ट्री के साथ कितना ज़रूरी है, और तलबा तलबात के लिए ये इकदाम जो है वो किस कदर बेनिफिशियल साबित होता है। तो आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के साथ मिलेंगे मज़ीद इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। अपने मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 92.6 यूसीपी की दुनिया।
5: किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाजुन रख कर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान, मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान।

0: वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शारिफ। प्रोग्राम सफरे हिदायत के साथ मेरे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर खालिद जहीर। डॉक्टर खालिद जहीर यूसीपी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी इस्लामिक स्टडीज के टीचर हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने सवालात के सिलसिले की जानिब। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगाज से ही हर इंसान में नेकी और बदी दोनों रख दी होती है या फिर ये वक्त के साथ साथ तरवीज पाती है?
1: देखिए, असल में एक चीज होती है पोटेंशियल, इम्कान, और फिर एक इम्कान का जहूर होता है। तो जहां तक इम्कान का ताल्लुक है पोटेंशियल का, वो तो यकीनन पहले दिन से ही होता है पैदाइशी तौर पर, लेकिन क्या होता है कि वक्त के साथ साथ नए नए हालात में आप नई सूरत हाल को फेस करते हैं और फिर आपके अंदर का वो पोटेंशियल रियलाइज होता है, वो सामने आता है। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि पोटेंशियली बिलकुवा तो पहले दिन से ही इंसान के पास होता है, लेकिन बहरहाल उसका जहूर, उसका इजहार वक्त के साथ साथ होता है।
0: ठीक। इंसान जब गुनाह कर लेता है तो फिर वो अल्लाह से तौबा किस तरह कर सकता है, क्योंकि हमारे माशरे में जो मुरव्वजा तौबा है उसकी एक आम बंदे को समझ नहीं आती कि वो एक गुनाह करता है फिर तौबा करता है फिर बार बार वही गुनाह करता रहता है यहाँ तक कि अपने रब से मिल जाता है। तो तौबा का हकीकी मानी और मफहूम और अल्लाह की तरफ रुजू करने का सही जो तरीका है उसकी वजाहत फरमा रहे।
1: देखिए शारिफ, हमने आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस किया कि अल्लाह ने इंसान को अखलाकी हिस्स दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान की जो शख्सियत है ना, बातनी शख्सियत, जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन आप इमेजिन करें कि वो एक जिस्मानी वजूद रखती है, तो उस में अल्लाह ने ये बात वाज़े तरीके से चस्पा कर दी है कि उसने झूठ नहीं बोलना, उसने लोगों के साथ ज्यादती नहीं करनी, उसने बेहयाई नहीं करनी। ठीक है, अब अगर वो चीज जो उसके वजूद के साथ लगी हुई है, जब उसकी ख्वाहिश या हालात उसको वहां से उखाड़ते हैं, तो उसे रूहानी तौर पर, अखलाकी तौर पर तकलीफ होती है, वो शर्मिंदा होता है, उसे परेशानी होती है। यही वो चीज है कि जो उसको तौबा की तरफ माइल करती है, यानी मैंने आज झूठ बोल दिया। जब पहली मर्तबा जब इंसान झूठ बोलता है तो उसे शदीद तकलीफ, कर्ब होता है रूहानी, तो वो फिर अल्लाह से माफी मांगता है और ये बड़ी फितरी चीज है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है। ये अल्लाह से माफी मांगना और अल्लाह की तरफ रुजू करना, यही तौबा है। इसमें ये आप से आप शामिल है कि जब इंसान ऐसी बात कहता है, अल्लाह के सामने अपनी गलती का इतराफ करता है, तो वो ये भी तय करता है कि आइंदा मैं ये घटिया हरकत नहीं करूंगा, ऐ खुदा तू मेरी मदद कर, यही तौबा है, यानी अल्लाह की तरफ पलटना। अब वो मस्जिद में सजदे के बाद, नमाज के बाद या उसके अलावा ये तौबा करके बाहर निकलता है और फिर उसके सामने वैसे ही हालात आ जाते हैं और फिर वो अपनी कमजोरी की वजह से उसी गुनाह में पड़ जाता है, तो अब फिर उसके अंदर शर्मिंदगी पैदा होगी। वो शर्मिंदगी अगर पैदा हो गई है और वो उस शर्मिंदगी का इजहार अपने रब के सामने कर रहा है और उस इजहार के साथ वो अपने अंदर ये अजम भी रखता है कि वो आइंदा नहीं करेगा, तो बस उसका गुनाह धुल गया। अब तीसरी बार करेगा तो तब भी ऐसा ही करेगा। ये जरूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी जब तौबा कर रहा हो तो अगले गुनाह की प्लानिंग भी कर रहा हो, फिर तौबा हुई नहीं। यानी ये नहीं हो सकता कि जैसे हमारे यहाँ बाज़ लोग समझते हैं कि हमने इस साल रिश्वत में 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसमें से हम कोई 10 लाख 5 लाख खर्च करके उमरा करने जाते हैं और अपने गुनाहों की जो है ना रिकॉर्ड को बिल्कुल साफ कर देते हैं और फिर वापस आके मजीद अगले साल और हम हराम माल कमाएंगे और फिर उमरा कर लेंगे और फिर तौबा हो जाएगी। नहीं, कोई तौबा नहीं होगी, तौबा कबूल ही नहीं होगी। असल में आपने तौबा की ही नहीं। तौबा में ये बात शामिल है कि जो गलत काम आपने किया है आप उस पर शर्मिंदा हैं, आप उस शर्मिंदगी का इजहार अल्लाह के हुजूर में कर रहे हैं और आइंदा उस गुनाह को न करने का इरादा कर रहे हैं।
0: مطلب توبہ کا دار و مدار نیت پر ہے.
1: یقیناً تو آپ کے اندر کے ایک شرمندگی کے احساس کے اظہار کا نام ہے.
0: اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے, اس سے اللہ رب العزت کی کیا مراد تھی؟
1: وہی مراد جو ہم نے ابھی بات کی کہ ایک برائی کا راستہ ہے اور ایک نیکی کا راستہ ہے, دونوں بتا دیے. ہم نے رہنمائی کر دی, ہم نے سجھا دیا, ہم نے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ راستہ ہے جو برائی کا راستہ ہے, یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا, یہ شیطان کا راستہ ہے. یہ ہے نیکی کا راستہ, سیدھا راستہ, یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سجھا دیے. ہر انسان اس دنیا میں نیکی اور بدی کا شعور لے کے آتے ہیں. تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے خدا کا پیغام ہے. پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, اور اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی اخلاقی حس کو بیدار کریں اور دوسرے انسانوں تک بھی اس کو پہنچانے کے لیے فکر مند ہوں.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ اللہ انسان کی شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟
1: دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا جو بھی تصور ہم کو ملے گا وہ میٹافوریکل ہوگا, یعنی وہ استارے کی زبان میں ہوگا, وہ لٹرل نہیں ہوگا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شہرک کے ساتھ کوئی ایسے ایسا حصہ ہے جو نعوذ باللہ جس کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے اللہ آپ کے بہت قریب ہے, آپ کی ہر بات جانتا ہے, آپ کی ہر نیت سے واقف ہے, ہر دعا سنتا ہے, وہ آپ سے قریب ترین ہے. آپ تین ہوتے ہیں کسی مجلس میں تو وہ چوتھا ہوتا ہے, آپ چار ہوتے ہیں تو وہ پانچواں ہوتا ہے, آپ اندھیروں میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جانتا ہے, آپ اجالے میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور, وہ تو آپ کے سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اسی بات کو ایک آیہ مبارکہ میں اس طرح بیان کر دیا گیا کہ وہ تو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے.
0: ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمیشہ کی طرح آپ کی سحر حاصل گفتگو نے پروگرام کو آخر تک بنائے رکھا. سامعین, یہاں وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. آپ سن رہے تھے پروگرام سفر ہدایت, موضوع تھا ہمارا قرآن مجید میں انسانی ترقی اور تزکیے کا بیان. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا. اپنے میزبان محمد شارب اور مہمان ڈاکٹر خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की।
1: वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर है आपके साथ यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6 फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रोग्राम में। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, तो उनसे दोबारा से एक सवाल और उनसे रहनुमाई ज़रूर तलब करेंगे कि हमारे पास कानून की तालीम के ऊपर ज़ोर इस कदर ज़्यादा नहीं दिया जाता जिस तरह से हमारी बकिया तालीम पर ज़ोर दिया जाता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आया हमारे स्कूलिंग में या हमारे कॉलेज की जो स्टडी है उसके अंदर भी कानून की तालीम को शामिल कर देना चाहिए ताकि आगाही सर ज़रूर रहे ताकि
2: ऑलराइट। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है और मेरा आंसर भी ओपिनियन बेस्ड ही होना चाहिए। तो मैं एक अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा इसके अंदर। तो जो हमारा पाकिस्तान है ये एक डॉक्यूमेंट के ऊपर चलाया जा रहा है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।

0: अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, ठीक है, मींस कि उसके उसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी। इसको ग्रैंड नॉर्म लॉ भी क्या कहा जाता है, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसके खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। जो पार्लियामेंट अदरवाइज लॉ बनाती है ये सिंपल लेजिस्लेशन के थ्रू बनाती है। अब उसके लिए वही रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ज़रूरी थी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी, लेकिन जो सिंपल लेजिस्लेशन होती है उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मींस कि अगर 342 मेंबर्स हैं तो आपको 171 और 172 मेंबर्स चाहिए होंगे एक लॉ बनाने के लिए। और वैसे भी ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि 172 होना चाहिए, वर्ड यूज़ हुआ है कोरम पूरा होना चाहिए और उसके साथ साथ मेजॉरिटी उस लॉ के हक के अंदर वोट दे रही हो। फॉर इंस्टेंस अगर टोटल मेंबर हैं 342 तो ये ज़रूर मैटर ये करेगा कि उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कितने अवेलेबल हैं। अगर फॉर इंस्टेंस 200 बंदा अवेलेबल है, 200 MNAs अवेलेबल हैं, तो उसके लिए उस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लॉ बनाने के लिए आपको 101 बंदा चाहिए होगा। तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, सिंपल लॉ जिसे हम कहते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट इसे कहा जाता है। तो उसको बनाने के लिए या उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती
1: जी
0: है।
1: सर
0: सो बेसिकली ये जो आपके वैल्यूज़ हैं वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक जो आम बंदा है उसको उसकी स्कूलिंग के अंदर ही ये सारे उसके जो राइट्स हैं, उसको वो किस स्टेट के अंदर रह रहा है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सारा कुछ उसे पता होना चाहिए ताकि उसे पता हो कि वो कहाँ पर रह रहा है। लेकिन जो एक मेजर लॉ की स्टडी होती है, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि उसको पढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज बाकी भी और काफ़ी फील्ड हैं जिनको आपको जानने का राइट तो ज़रूर है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एक्सेट्रा, लेकिन वो हर चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अब जो MBBS है, डॉक्टर है, फिजिशियन है या फिर साइंटिस्ट हैं, उनकी भी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं सकता बिकॉज हर किसी के सरकमस्टांसिस वगैरह डिफरेंट होते हैं और हर कोई डिफरेंट फील्ड परसू कर रहा होता है। तो मुझे लगता है जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर देना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की तालीम है वो ज़रूर देनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान कौन से लॉज के ऊपर काम कर रहा है, आपके ऑर्गन कौन कौन से हैं एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हो ही रही है तो इसकी बुनियादों की बात कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद क्या रही और किस तरह से उस बुनियाद की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बुनियाद इस्लामिक प्रोविजन्स हैं, कि कोई भी हमारी आने वाली प्रोविजन, कोई भी कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। सर अभी बहुत सारे कानून इस तरह के मौजूद हैं जिसके अंदर इस्लामी सज़ाएं या इस्लामी कानून उस तरह से राइजुल अमल नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था।
0: अच्छा तो आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जितने भी लॉज बनते हैं तो अगर इन केस कोई डिस्प्यूट वगैरह हो कि ये लॉज अन इस्लामिक हैं तो हमारे पास दो फोरम अवेलेबल होते हैं। पहला है काउंसिल ऑफ इस्लामिक इंटरेस्ट, वो एक काउंसिल है जिसको पार्लियामेंट भेज सकती है, प्रेसिडेंट भेज सकता है कि आप बता दें, आप हमें एडवाइज़ कर दें कि क्या ये लॉ इस्लामिक है कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट शुरू हो जाती है कि जी ये जो लॉ आप बनाना चाह रहे हैं ये तो है ही अन इस्लामिक, तो उस सिचुएशन के अंदर स्पीकर भेज सकता है या पार्लियामेंट रेफर कर सकती है टू द काउंसिल ऑफ इस्लामिक इंटरेस्ट, वो बताएंगी कि ये लॉ इस्लामिक है या नहीं है। जब तक उनकी कंसेंट आएगी, उनकी कंसेंट आने के बाद या उन्होंने जब ओपिनियन देनी है उसके बाद ही लॉ बनाया जाता है। उसके अलावा उधर से जो भी आए, वैसे मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि उनका जो भी फैसला हो या वो जो भी मशवरा दें वो बाइंडिंग नहीं होता पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट फिर भी कॉम्पिटेंट होती है कि वो लॉ बना सकती है। लेकिन इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ फेडरल शरिया कोर्ट, आप उसके अंदर वो लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप उधर चैलेंज करते हैं तो आप सेटिसाइड करवा सकते हैं, अगर फेडरल शरिया कोर्ट उसे सेटिसाइड करती है तो इट मीन्स के वो लॉ अब है ही नहीं।
1: जी जाहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारी सामीन की बड़ी पुरजोर फरमाइश थी कि कानून के बारे में हमारी रहनुमाई की जाए। तो अभी तक के लिए जो रहनुमाई रही है हमारी कि एक आम इंसान कानून को

0: कैसे समझेगा, किस तरह समझेगा, और FIR जैसा एक बुनियादी अमल जो हमारे आए रोज़ हमें देखने को मिलता है उसकी हमने प्रोसीडिंग्स कैसे करनी है, हमने ये भी आपसे आज के दिन में जाना। और आखिर में आपने कानून की तालीम की अहमियत को ऊपर चार चांद लगाए, रोशन किया उसको। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, आपने अपना वक्त दिया हमें आज FM रेडियो 92.6 की बदौलत हमें बहुत सारी रहनुमाई आपके वसीले से मिली।
1: जी थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर टू बी हेयर, ऑलवेज देयर फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच।
0: जी सामिन, बहुत शुक्रिया आपके सुनने का FM 92.6 UCP की दुनिया फैकल्टी ऑफ लॉ के अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलामुअलैकुम सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ अहमद रज़ा। फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन आर में आज हम बात करेंगे एक अहम तरीन टॉपिक पे, जो कि है फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजोन। फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजोन है क्या और किस तरह काम करता है, इसी पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर सलीम अख्तर मगराना ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हैं, और उसके साथ साथ फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजोन ऑफिसर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन और PhD प्रोग्राम को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। और सर, सबसे पहले आपसे जानूंगा कि फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजोन प्रोग्राम है क्या और इसका बुनियादी मकसद क्या है।
3: थैंक यू हमजा फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजोन प्रोग्राम जो है वो एक ऐसा स्ट्रेटजिक इकदाम है जो कि UCP और इंडस्ट्री के दरमियान बेसिकली मुअस्सर ताल्लुक़ को कायम करने के लिए बनाया गया है। बैन अल-अक़वामी सतह पर भी तालीमी इदारे अपने निसाब को इंडस्ट्री के साथ हमांग रखते हैं, ताकि तुलबा को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जा सके। उसी तर्ज पर यह प्रोग्राम जो है वो तुलबा को क्लासरूम से निकालकर हकीकी प्रोफेशनल माहौल से जोड़ता है, उनको नए तजर्बात से गुजारता है, इंडस्ट्री के अंदर मौजूद जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हवाले से जो है वो उनको हम आहंग करता है। तो बेसिकली इसका जो मकसद है वो अब न सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर बनाना है, बल्कि इसका मकसद जो है वो ऐसी तालीम देना है जिससे तुलबा जो है वो अमली तजर्बा हासिल कर सकें, इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पे विज़िट करें, अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो है वो फौरी तौर पर जॉब मार्केट के लिए अपने आप को तैयार समझें। और इस तरह के प्रोग्राम से ना सिर्फ इंफरादी सतह पर तरक्की होती है, बल्कि मजमूई तौर पर भी तालीमी मयार जो है वो बेहतर होता है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रोरेक्टर साहब का जो विज़न है वो ये है कि अब हम तुलबा को क्लासरूम से निकालकर इंडस्ट्री में लेके जा रहे हैं। तो ये जो हमारा फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजोन प्रोग्राम है, बेसिकली वो उस विज़न को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
2: प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल तो वाकई बहुत वर्थेबल है, और आजकल तो प्रैक्टिकल की डिमांड भी है। ज़ाहरी बात है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान जो कनेक्शन है वो कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल में आना वो यूनिवर्सिटी के लिए तो कारामद है, लेकिन यूनिवर्सिटी का और किसी इंडस्ट्री का मिल के काम करना वो कितना मौसर साबित होता है।
3: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेसिकली जो इंटरनेशनल रिसर्चेज हैं वहाँ से ये साबित होता है कि दुनिया भर में वही तालीमी निज़ाम जो है वो ज़्यादा कामयाब ठहरता है जो इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक ख़ुद को अपडेट रखता है, जहाँ तुलबा बराह रास्त इंडस्ट्री में काम करते हुए सीखते भी हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान में भी इस तरह का मॉडल जो है वो अपनाया गया है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, UCP के अंदर। और इस प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान न सिर्फ रابطہ मजबूत होता है, बल्कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना निसाब जो है वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ज़्यादा रेलेवेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता चल जाता है कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या अपडेट्स आ चुकी हैं, क्या नई इनोवेशंस आ चुकी हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उसके मुताबिक उन्होंने अपने जो सिलेबस है उसको कैसे अपडेट करना है। इंडस्ट्री को इससे ये फ़ायदा होता है कि इंडस्ट्री को ना सिर्फ स्किल्ड वर्कर मिलता है, ना सिर्फ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, बल्कि उसके साथ साथ ऐसे लोग भी उनको मिलते हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर जहां पर भी डेफिशिएंसीज हैं या जहां पर भी चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है या जहां पर भी इंडस्ट्री जो है वो कहीं पर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही, तो ये जो नए स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री में जाते हैं इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, डिफरेंट अप्रोचेस के साथ, इस एक्सपोजर के साथ और अपडेटेड सिलेबस के साथ, तो डेफिनेटली वो वहाँ पर उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित होते हैं।
2: बिल्कुल, प्रैक्टिकल की बात आपने की, यूनिवर्सिटी को किस तरह इंगेज करती है स्टूडेंट्स को। और आजकल तो एआई का दौर है और टाइम से टाइम जो है वो नई इनोवेशंस मीडिया में भी आती हुई हमें नज़र आती हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है बेसिकली मीडिया डिपार्टमेंट किन किन इदारों के साथ काम कर रहा है और कौन से इदारे जो हैं वो इनके साथ कनेक्शन में?
3: देखें, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल नॉन मीडिया इंडस्ट्री है, ठीक है। हमारे पास बड़े न्यूज़ चैनल्स मौजूद हैं, हमारे पास एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हमारे पास एडवर्टाइजिंग पीआर की बड़ी फर्म्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेसिकली यूसीपी ने और फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन ने इन बहुत से बड़े इदारों के साथ अपनी कोलेबोरेशंस कर रखी हैं, एमओयू साइन कर रखे हैं, जिसमें दुनिया न्यूज़ है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क है, जिसमें सुनो न्यूज़ है, जिसमें मैसेज कम्युनिकेशन है, मार्शमेलो कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो रेडियो पाकिस्तान है। तो इनके साथ हमारी कोलेबोरेशंस चलती रहती हैं, हमारी पार्टनरशिप्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये टैलेंट डेवलपमेंट, जब इन लोगों के साथ हमारी कोलेबोरेशंस चल रही होती हैं तो ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आके हमारे स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट अपने सेशंस करते हैं और टैलेंट को डेवलपमेंट करने के जो है वो ये काम आता है। तो जब ये यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज मिलकर काम करती हैं तो उससे ना सिर्फ तुलबा को प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका मिलता है और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त इसी प्रोग्राम के अंडर जो है वो डिफरेंट मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वेल नोन चैनल्स के अंदर अच्छी पोजीशंस के ऊपर यहीं से सिलेक्ट होके गए हैं और इस वक्त जो है वो अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर। तो इससे न सिर्फ कनेक्शंस बनते हैं बल्कि इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर भी होता है स्टूडेंट्स का और उनको पता होता है कि इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे क्या मार्जिन्स हैं उनके लिए और किन फील्ड्स में वो जा सकते हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है।
2: बिल्कुल, तलबा को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। और फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन आर में हम बात कर रहे थे फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन के हवाले से, और इसी पे बात कर रहे थे हमारे साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट डॉक्टर सलीम अख्तर मगराना, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें डिटेल जो है बताई कि फैकल्टी और इंडस्ट्री का कनेक्शन कितना ज़रूरी है और किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर अपने तलबा तलबात को जो है वो सिलेक्ट करवा के उनके टैलेंट की बेस पे उनको मीडिया में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और इसी पे मज़ीद आगे सवाल करते हैं सर से, पूछते हैं कि सर रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है उसका क्या किरदार है और वो कितनी ज़रूरी है। सर
2: देखें, फैकल्टी इंडस्ट्री लाइजन प्रोग्राम का तो बड़ा मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम से इंडस्ट्री में लेके जाना है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो हैं वो इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज के लिए सबसे अहम जुज समझी जाती हैं, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो हायरिंग्स करते हैं, स्टूडेंट्स के ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज होते हैं, उनका टैलेंट जो है वो असेस किया जाता है और उसकी बेस पे फिर उनको इंटर्नशिप्स ऑफर की जाती हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनीज के तौर पे सिलेक्ट हो जाते हैं। इन रिक्रूटमेंट ड्राइव से ना सिर्फ तुलबा का जो है वो एतमाद बढ़ता है बल्कि वो हकीकी माहौल के अंदर इंटरव्यू का सामना करते हैं कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, जिससे उनकी ग्रूमिंग होती है, उनको प्रोफेशनली जो है वो किसी भी जगह पर जब इंटरव्यू के लिए उन्होंने खुद को प्रेजेंट करना है तो उसके हवाले से उनका एक्सपोजर भी हो चुका होता है। और इसी वजह से जो है जहां पर उनकी डेफिशिएंसीज रह जाती हैं, कल को जब वो इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए बैठते हैं जाते हैं तो उनको पता होता है कि ये जो है ये चीज़ जो हम पहले मिस कर गए थे अब इसको हमने ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है। तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि लेटर ऑन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं अपनी हायरिंग्स के लिए अप्लाई करते हैं जब, तो उस वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं।
1: बहुत खूब सर। और अगला सवाल जो है वो मेरी पसंद का है कि, और मैंने बड़ा इंजॉय किया जब हमने इंडस्ट्रियल विजिट किया एक चैनल का, और उस वक्त मैंने तो उससे बहुत इंजॉय किया। तो इंडस्ट्रियल विजिट जो है स्टूडेंट्स के लिए वो कहाँ किस हद तक जो है स्टूडेंट्स के लिए कारामद साबित होता है, फायदेमंद होता है?
2: इंडस्ट्रियल विजिट देखें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों का इंडस्ट्री का दौरा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और जिस अमल में कल को उन्होंने शरीक होना है, जिस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई करना है, जिस पोजीशन पे कल को उन्होंने बैठना है, वो उसका बराह रास्त जो है वो वहाँ पे मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। जैसे टीवी में कोई हम इंडस्ट्रियल विजिट लेके जाते हैं, हमने दुनिया न्यूज़ में सिटी न्यूज़ नेटवर्क में इंडस्ट्रियल विजिट्स लेके जाते हैं तो वहाँ पर उनको स्टूडेंट्स को न्यूज़ रूम का दौरा करवाया जाता है, वहाँ पे उनको प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बताया जाता है, उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं, उनको सारे उस माहौल का पता चलता है कि एक इंडस्ट्री के को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहाँ बैठना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना है उनका, और ये तमाम चीज़ें जो है वो उनको इंडस्ट्रियल विजिट के बाद जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आती हैं। इसके साथ साथ जब क्लास में हम पढ़ा रहे होते हैं तो बेसिकली थ्योरीज पढ़ा रहे होते हैं और साथ में हम उनको प्रैक्टिस के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें इस तरह से इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिस करनी है। तो इंडस्ट्रियल विजिट जब स्टूडेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो जो थ्योरी हम पढ़ा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं वो उसका बेसिकली जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि इंडस्ट्री में हो रही है वो उस वक्त उसको बराह रास्त जाके उसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि जी ये चीज़ हमें इस तरह से बताई गई थी और जब कल को हमने इसको एग्जीक्यूट करना है तो वो इस शेप में या इस फॉर्म में जो है वो हमारे सामने मौजूद होगी, तो हमने खुद को उसके लिहाज से प्रिपेयर करना है।
1: बहुत खूब सर, क्योंकि मैंने इसको बड़ा मज़ेदार तरीके से इंजॉय किया और मैं तो वेट कर रहा होता हूँ कि यूनिवर्सिटी से कोई एक आधा इंडस्ट्रियल विजिट जो है वो हमें मिले और हम जो जाके, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। मैं जब खुद भी गया फर्स्ट टाइम विजिट पे तो मुझे बड़ा मज़ा आया। हमने देखा मास्टर कंट्रोल रूम है, उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल रूम है, काम किस तरह करते हैं, और फिर हमें साथ में गाइड किया हमारे टीचर्स ने कि ये आपको हमने वहाँ पर बताया था, ये इतनी ज़्यादा जो स्क्रीन होती हैं ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह काम करती हैं, क्यों काम करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत कारामद साबित हुआ, और स्टूडेंट्स ज़ाहरी बात है उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद जो होते हैं। और सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलमेनाई मीटिंग्स और लेक्चर्स, और वो हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के पेजेस पे भी देखते रहते हैं कि मीटिंग्स वगैरह की रील्स अपलोड होती हैं और मीटिंग्स हो रही, तो उसका मकसद क्या होता है और वो कितने अहम होते हैं एक डिपार्टमेंट के लिए?
2: एलमेनाई जो होते हैं उनको तालीमी इदारों में एक बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है, ठीक है, और दुनिया के तमाम बड़े जो तालीमी इदारे हैं वो अपने एलमनाई को हमेशा अपनी एकेडमिक जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ एंगेज रखते हैं। तो उसी मॉडल के तहत यहाँ पर यूसीपी के अंदर भी हमारा एक बहुत बड़ा एलमनाई नेटवर्क जो है वो मौजूद है, डिफरेंट फैकल्टीज़ के लेवल पर मौजूद है, और फैकल्टीज़ जो हैं पहले अपने अपने तौर पर अपने एलमनाई को जो है वो एंगेज रखते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जाते हैं। इसका जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से ग्रेजुएट होके जा चुके हैं और इस वक्त कहीं पर भी इंडस्ट्री में किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं या एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने की और उसके बाद वो खुद किसी इंडस्ट्री के मालिक बन के बैठे हैं, सीईओज बन के बैठे हैं, ठीक है, तो वो एक तो उनके लेक्चर्स हम यहाँ पे करवाते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं या अपने प्रोफेशन के अंदर, और वो बताते हैं कि वो एज अ स्टूडेंट उन्होंने यहाँ पे लाइफ कैसे गुजारी और यहाँ की लर्निंग की बेस पे इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी ये पोजीशन कैसे सिक्योर की, ठीक है। उसके साथ साथ डेफिनेटली जब वो अच्छी पोजीशंस के ऊपर बैठे होते हैं तो जो इस वक्त हमारे ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं हम उनका कनेक्शन करवाते हैं उनके साथ, ताकि इन फ्यूचर जब यहाँ से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे तो वो उनका एक आपस में लाइजोन बन जाए, वो हेल्पफुल हों उनके लिए, बेनिफिशियल हों उनके लिए इंडस्ट्री के अंदर, और कोई भी जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पेश आए, कोई मुश्किल पेश आए तो वो उनके साथ डिस्कस भी कर सकें, अपने कोई भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई सलूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकें। और डेफिनेटली वो सीनियर्स भी होते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जब हम उनको यहाँ पे बुलाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपने, तो जो एलुमनाई हैं हमारे बेसिकली वो हमारे ऑनगोइंग स्टूडेंट्स के साथ अपनी कामयाबी की कहानियाँ शेयर कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में उनको बता रहे होते हैं और उनकी रहनुमाई कर रहे होते हैं डिफरेंट लेक्चर्स के दौरान, डिफरेंट मीटिंग्स के दौरान, डिफरेंट सेशंस के दौरान, कि वो अपनी कैरियर प्लानिंग कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं ताकि कल को इंडस्ट्री में वो भी कामयाबी का सफ़र तय कर सकें।
1: बहुत खूब सर, और कैरियर प्लानिंग की आपने बात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे हम थ्योरी पढ़ते हैं, जहाँ पे सब कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक गोल का सेट होना और फिर वो एक स्टोरी के साथ सेट हो जाना वो बहुत मायने खेज होता है, वो बहुत मायने मुताबिक रखता है आपकी कामयाबी के साथ। तो यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुताबिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: यही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

जंग चणु चुप चुपीता वेख के पई आखण लोग मलंग असा खुबे गम दे खोबड़े साडे लंबे हो गए केस पाता ने बाने सोच दे असा बुंदे रहंदे खेस साडे सर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सया बिन छाउण चीतर रुख दी साडे अंदर बांबड़ बार असा मच मचाया इश्क दा साडे लूसे आई किकलू असा खुद नू भुले सांवला सा हरदम जपया तू।

जलवा आण दिखाया, बुलबुल नहर हवावां फुल भी हो गए मस्त। रोज अवल में जाम जे पीता वादत मस्ती वाला, बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिसदे मस्त। ओ ना डरदा दोजख बोलो ना लालच जन्नत दा रखे,

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 ओनली ऑन एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।